0: महेश्वर शंभो हर हर महादेव।
1: सुजन हो 158 नारद भक्ति सूत्र लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात् या संदर्भातला अधिक विवरण असा आहे। भगवान श्री कृष्ण उद्धवाला सांगतात, करिता माझी कथा श्रवण,

0: दादी की सालगिरह थी।
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन।
2: Let's go!

होशियार, नाउ एवरीथिंग इज तैयार, खाना चटपटा और मसालेदार। अब आ जाओ मेरी सरकार, तुम्हें पुकारे कौन?

0: सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तन्नूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।
1: अहो पैशांची गरज आहे तर इकडे तिकडे कशाला मागायचे? आपल्याकडील सोनं देऊन नामको बँकेचे हक्काचे सोने तारण कर्ज घ्यायचे, तेही एका तासात।
2: व्याजदर 8.9% आणि शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर 8.5%,
1: मुदत 1 वर्ष। आजच आपल्या नामको बँक शाखेला भेट द्या, नियम व अटी लागू।

दोस्तों, जहन के किसी कोने से तांक झांक कर रही हैं कुछ ऐसी गजलें जो आप ही नहीं मैं भी भूल चुका हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने

हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
0: अल्लाह अल्लाह हर हर हर हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

0: दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर सन 1922 में हुआ। इलाका किस्सा खानी बाजार पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है। दिलीप साहब के पिता लाला गुलाम सरवर खान फलों के व्यापारी थे और तजारती वजूहात की वजह से ही ये पेशावर से महाराष्ट्र के देवलाली इलाके में पहुंचे थे। दिलीप साहब की शुरुआती पढ़ाई नासिक के नजदीकी इलाके देवलाली के बांस स्कूल में हुई थी और 30 के दशक में इनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। पर अभी भी ये तय नहीं था कि दिलीप कुमार बड़े होकर एक्टर ही बनेंगे।
1: मैं पत्थर की मूर्ति को देवी समझता रहा, कांटे को फूल समझता रहा, तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझता रहा।
0: दिलीप साहब अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और पेशावर में इनकी दोस्ती रही राज कपूर के साथ। राज कपूर के परिवार के साथ इनके परिवार के बड़े अच्छे ताल्लुक थे। ये दोनों अक्सर खेला कूदा करते थे। नन्हे राज कपूर ने ये बात नन्हे यूसुफ से कई बार कही थी कि तुम आगे जाकर एक्टर बनना, जिस पे यूसुफ साहब कहा करते थे कि अरे भाई मैं क्यों एक्टर बनूंगा, तुम्हारे वालिद का ये पेशा है, तुम एक्टर बनना। किस्मत अपना खेल खेल रही थी और दिलीप कुमार धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ये वो वक्त था जब हर लड़का कुछ नया करना चाहता है।
2: तो इसका ये मतलब हुआ भैया कि वो 6 साल से आपको धोखा दे रहे हैं। इस तरह बेइंसाफी को बर्दाश्त करना भैया गरीबी का नहीं बुजदिली का सबूत है। जो कुछ भी हो हमें सच्चाई से मुंह होना चाहिए। और सच बात यह है भैया कि सेठ जी अपने मजदूरों से धोखा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से धोखा कर रहे हैं, अपने देश से धोखा कर रहे हैं।
0: और अपने बड़ों के साथ इनकी जरा हल्की अनबन सी हुई और ये पुणे की तरफ रवाना हो गए।
1: अच्छा तो जी आ गया, जिंदगी रही तो फिर दर्शन करूंगा।
0: यहाँ पे ये बतौर कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर काम करने लगे। अच्छी अंग्रेजी अच्छी उर्दू बोला करते थे और फौरन बिजनेस में इन्होंने पांव जमा लिए।
3: ये देश का वक्त नहीं है, हमारे इम्तिहान का वक्त है।
0: इसी बीच इनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जिनके साथ ये बॉम्बे टॉकीज गए। बॉम्बे टॉकीज एक ऐसी फिल्म कंपनी थी जिसने बड़े बड़े एक्टर्स को मौके दिए थे। यहाँ पे यूसुफ खान की मुलाकात हुई देविका रानी से। देविका रानी के साथ इन्हें मौका तो मिला पर ये अपना नाम यूसुफ नहीं रखना चाहते थे। बात ये भी थी कि ये अपने परिवार से छिपा के रखना चाहते थे कि ये बतौर एक्टर काम करने लगे हैं। शायद ये बात इनके परिवार को नागवारा होती, इसीलिए दिलीप कुमार के सामने 3 विकल्प रखे गए। या तो ये अपना नाम वसुदेव रख ले, या फिर जहांगीर, या दिलीप कुमार। और इस तरह से यूसुफ खान ने दिलीप कुमार बनना पसंद किया।
2: इंसान अपने माँ बाप के नाम से नहीं, अपने गुणों से अच्छा या बुरा समझ सकता है।
0: इनकी पहली फिल्म रही ज्वार भाटा। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी, पर इनके अभिनय ने सबको मुतासर किया था।
1: अंजाम मोहब्बत किसने सोचा, होगा वही जो होना है, सारा जीवन सुख में कटे या सारा जीवन रोना है।
0: उसके बाद भी कई फिल्मों में ये काम करते रहे, चाहे वो जुगनू रही के शहीद या फिर महबूब खान साहब की फिल्म अंदाज, जिसमें राज कपूर और नरगिस इनके साथी कलाकार थे।
1: बात ये नहीं ना कि मुझे मुझे नजला हो गया।
0: ये सभी फिल्में अच्छा काम कर रही थीं और तब दिलीप कुमार साहब को ये याद आया कि एक बार एक ज्योतिषी ने इनका हाथ देख के कहा था कि ये तो बड़ा होकर नट बनेगा। दिलीप साहब को नट का मतलब नहीं पता था। नट के माने अंग्रेजी में होते हैं सिर फेरा, इसलिए दिलीप साहब बड़े परेशान हुए थे। पर उसके बाद किसी ने समझाया कि अरे भाई नट का मतलब जो नाटक और नाट्य से जुड़ा होता है।
4: अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम अपना खून तक देने के लिए तैयार हैं सेठ जी।
0: दिलीप साहब बतौर ट्रेजेडी किंग उभर कर आ रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री को उसकी त्रिमूर्ति मिल चुकी थी। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, ये तीनों ही अलग अलग शैली में अभिनय किया करते थे।
5: सलाम उन बादशाहों को किया जाता है जो दिलों पर हुकूमत करते हैं, मक्कारों का सलाम नहीं किया जाता।
0: पर दिलीप कुमार के साथ ट्रेजेडी किंग का तमगा इस तरह से चिपका कि इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा और कहना पड़ा मैं बहुत ही त्रासदी भरे किरदार निभा चुका हूँ, अब क्या करूँ। तब इन्हें समझाया गया कि ये जरा कुछ हल्की फुल्की फिल्में भी करें, नहीं तो देवदास और यहूदी जैसे किरदार इनके मन पे गहरा असर छोड़ देंगे। और तब दिलीप कुमार ने कुछ कॉमेडी फिल्म भी की, जैसे की कोहिनूर और राम और श्याम।
6: तेरा नाम कभी लक्ष्मण कभी राम, वावार तेरी शान वावार तेरी शान, आधी सुपारी और आधा पान, खाता क्या है मेरा जमुरा।
0: दिलीप साहब को जब हॉलीवुड से ऑफर आए तब इन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि दिलीप कुमार साहब के प्रेम संबंध रहे थे मशहूर अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ, पर कामिनी कौशल की बड़ी बहन गुजर गई थी और इसी वजह से कामिनी कौशल ने अपने जीजा के साथ शादी की और अपनी बहन के बच्चों को पाला।
2: लड़की में कोई ऐब नहीं है, लड़की में कोई ऐब नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत शरीफ लड़की।
0: उसके बाद दिलीप कुमार और मधुबाला के प्रेम संबंध भी सामने आए।
7: अगर तुम सा

0: और फिर नया दौर में कोर्ट केस ऐसा पड़ा जिसके बाद शहजादे सलीम और अनारकली हमेशा के लिए अलग हो गए।
1: अंधेरे और दुख से भरी हुई इस दुनिया में मंजू, सही रास्ता तलाश करने के लिए मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है।
0: ये दोनों चाह कर भी नहीं मिल सकते थे क्योंकि तलखियां इतनी बढ़ गई थी।
2: हाँ, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरा क्या साथ है?
0: वो और बात है, जब दिलीप कुमार ने अपने से 22 साल छोटी लड़की सायरा बानो से शादी की तब मधुबाला ने इन्हें फोन करके बुलाया और कहा, हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। और ये आखिरी मुलाकात थी दिलीप कुमार और मधुबाला की।
2: मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर चली गई, क्या यही था तुम्हारा प्यार? काश तुम न जाती।
0: सभी को लग रहा था कि शायद दिलीप कुमार अब शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये मुंबई छोड़ मद्रास में अपना बेस बना चुके थे, पर आखिर में सायरा बानो के साथ इनकी शादी हुई।

0: एक तरफ करियर चल रहा था, दूसरी तरफ प्रेम भी। तो धीरे धीरे दिलीप साहब ने फिल्में करना कम कर दिया और उसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने दिलीप साहब के निजी जीवन को हिला दिया। दिलीप साहब की शादी की खबरें आई एक महिला के साथ जिसका नाम अस्मा बताया गया। इस बात ने इन्हें बड़ा झकझोर दिया था, पर बाद में सब ठीक किया गया और दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी अटूट बनी रही।
1: किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, सच में समझ नहीं आ रहा।
0: बड़े बड़े एक्टर सिर्फ दिलीप कुमार को एक्टिंग करता देख ही एक्टर बने, जैसे कि मनोज कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। सभी की एक मंजिल थी कि किसी तरह से दिलीप कुमार जैसा ओहदा मिल जाए।
1: उन्होंने रुपया लगाया नहीं सेठ जी, उन्होंने रुपया लगाया नहीं, रुपया पैदा किया। आपने जो छप्पर खड़ा किया था उसे इन आलिशान मकानों में बदलने के लिए भी उन्हीं मजदूरों ने अपना खून और पसीना एक किया। आपकी सोना उगलने वाली मिले भी उनकी मेहनत पर चलती हैं और आप भी दुनिया में किसी और चीज से नहीं, मेहनत से ही कामयाब हुए।
0: हर दौर में दिलीप कुमार जिस भी फिल्म में आए इतनी गहरी छाप छोड़ी कि इनके डायलॉग्स आज भी जुबानी याद हैं। चाहे वो मुगले आजम रही के लीडर, पैगाम रही के गंगा जमुना, मल्टी स्टारर क्रांति रही, सौदागर या फिर मशाल।

0: ले मुझे।
1: ये बात भी मशहूर रही थी कि राज कपूर खुद चाहते थे कि फिल्म संगम में दिलीप कुमार वो किरदार निभाएं जो बाद में राजेंद्र कुमार ने निभाया था, पर ये मुमकिन ना हो सका। दिलीप कुमार साहब को ढेर से अवार्ड से नवाजा गया और ये फहरिस्त वाकई बहुत लंबी है। दिलीप कुमार साहब के बारे में जितनी बातें कही जाएं उतनी कम हैं। सिर्फ इनका अभिनय ही नहीं, इनकी शख्सियत सब पे गहरा असर रखती है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में दिलीप कुमार साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

0: मेरे लाल।
1: दोस्तों सबकी मदद से काम हो इंसान का।
2: अरे वाह वाह वाह।
1: दोस्तों सबकी मदद से काम हो इंसान का।
3: अच्छा जी।
1: जंग में लड़ते सिपाही और नाम हो कप्तान का। मैंने काम क्या किया, सबने साथ जो दिया, उनकी पैंट को काट के रुमाल कर दिया।

0: खाओ हलवा पूरी दाल, हो गया है बुरा हाल। अब तो चूहों ने पेट में धमाल कर दिया,
1: नाच नाच नाच नाच, नाच बुरा हाल कर दिया। ओ जियो जियो मेरे लाल।
0: अरे तेरी झटपट भूख मिटाता हूँ, अरे नहीं पल भर दर्द।

दुनिया ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

है माँ, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

दुखी हूं मैं उस पद का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का।

वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

0: सुना आपने गीत?
1: जहाँ तुमने सुना।
0: रात को भी आप यही गीत गा रहे थे, क्यों गाया करते हैं आप इसे?
1: इसलिए कि तुम इसे पसंद करती हो।
0: नहीं, क्यों परेशान करते हैं आप मुझे?

ज्ञान के बिना मात्र होते अक्षरदार, बापदकारी ही ईर्षा मा से बने मतार, ना से नमक हरामी समझो होते पूरे चार।

0: मेरी सूरत के तलबगार मगर क्या जाने
1: कि मेरा मारा हुआ दुनिया में ना पानी मांगे।
2: वाह

0: तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: है? भांजा आ रहा है, अब क्या होगा? देवियों भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।